0: लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आजै सम्झनुहोस्।
1: हाम्रा सेवाहरू:
0: ओपिडी सेवा,
1: विशेषज्ञ ओपिडी सेवा,
0: निशुल्क औषधि वितरण,
1: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
0: फिजियोथेरापी सेवा,
1: अकुपंचर सेवा,
0: योग परामर्श सेवा,
1: क्रियाकल्प सेवा,
0: पूर्वकर्म पञ्चकर्म सेवा,
1: छार सूत्र सेवा,
0: जलौका सेवा,
1: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू।
0: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
1: विस्तृत जानकारीका लागि
0: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, बागमती करिडोर, गैरीगाउँ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4110-6096, 98514-2463।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
2: इट्स 3 p.m.

0: बिमाको लाभ दिए आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका आजै बनौस सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको बिमा अधिकर्ता सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स खुलेर जिउँ।
1: अनि तर यो कागज केमा थियो वा? अँ झिल्काई फेरि पर्सनल नम्बर ब्लकलाई वा दिए पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी टेलिकमर भए अफिस तरि आएर ब्लकलाई र खर्खाई अनि ब्याङ्क गरी बैङ्करी अँ सर चाहिँ तैँले लगपर्दी सम्लपति न आफै न मोबाइल नम्बर फेरिदिया बजेर ब्लक पाए विषय आफै न ब्याङ्क दे पनि जानकारी पिन पर्यम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थनी प्रज्ञा सचेत तल पर्यम
2: सतर्क तन ठगी तब्द क्या जोगिन
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
0: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
3: ब्याङ्कजी खैमत बिले क्यों दे एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग के गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो ही माध्यम क्या रे न्यो दे प्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठग दिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो दे प्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क तना ठजर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या ले जनहितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैं भरिदाई
1: समीची हो चौदह क्या मैं बोधे लोटी पड़ी रो बैंक ने विवरण पी विषय मुई खाता लिखे हमरो खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिल
3: आगे समी जो लोटरी पड़ती हूँ छाता ही गुदी
1: बढ़ दी आप बढ़ लोटरी खाली पड़ दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिल खबर बनी वित्तीय संस्था एक पासवर्ड पिन खाई मई आ रही सुमी बैंक आप ही बनी आ रही
3: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हेजरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैं भरिलाई
1: सामाजिक सञ्जाल जी छानले दाजीमरी बुझीमरी ब्याङ्क न आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनि लिङ्क खुल्दियो भन्दा उइसो सुखन क्या खलो सुजी तिमिलो खन यामो बिमारी छानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट न युआरएल चेक लना आछेवा घटना तल आफै लागि समय समयरी आफै न पासपोर्ट फेरदिल परिम तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिन
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
0: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: निकट मा दिदी बहिनी, विकट मा दिदी बहिनी, यो रेडियो दिदी बहिनी।